यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 25 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारा आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

रात 9:25 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम स्टूडियो से ही सुनवाया जाएगा।

शाम 5 बजे युवाणी में आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष परिसंवाद आकाशवाणी और युवा आकांक्षाएं। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे अशोक कुमार गोयल। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे रूपक धरती कहे पुकार के, प्रस्तुत करता होंगे अशोक कुमार गोयल। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। 9:20 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए कुछ कव्वालियां नुसरत फतेह अली खान से। फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा सुबह 10 बजे और 10:30 पर गाने नए तरह नए में। इसके साथ ही शाम 6:05 पर भी आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं।

शाम 5:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। 6:20 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। और शाम 7 आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्व भर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपुतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अल सुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होल्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपुतली, बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस गान।

मंडप में श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 9:20 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए नुसरत फतेह अली खान की गाई कुछ कव्वालियाँ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए सुनिए नुसरत फतेह अली खान की गाई यह कव्वाली।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आगे

श्रोणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रूपक धरती कहे पुकार के, प्रस्तुति सहायक और वाचक स्वर मोहम्मद शरीफ छिपा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अशोक कुमार गोयल।

धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, हरे भरे पौधों को लगाकर पृथ्वी को दुल्हन सा सजाएं। श्रोताओं, आज है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। दुनिया भर के लगभग 143 देश इस दिन को मनाते हैं। पर्यावरण पर मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी। 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक पृथ्वी थीम के साथ मनाया गया था। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है, इसलिए पर्यावरण को बचाना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा यह हमारे अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बुनियादी जरूरत है। विश्व पर्यावरण दिवस के पीछे का विचार एक सुंदर दुनिया बनाना है जो प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से मुक्त हो। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, अधिक पेड़ पौधे लगाना, पानी बचाना और वन्य जीवों व जानवरों को बचाना कुछ ऐसे कदम हैं जो बेहतर पर्यावरण की ओर ले जाते हैं। हमें हमेशा अपनी गतिविधियों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और उनका कुशलता पूर्वक सावधानी से उपयोग करना चाहिए। हम सब मिलकर एक सुंदर और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। बेहतर पर्यावरण के लिए पौधारोपण से अच्छा कोई विकल्प नहीं। आओ मिलकर एक पेड़ लगाएं।

पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह हमारे चारों ओर का वो प्राकृतिक और मानव निर्मित ढांचा है जो जीवन को संभव बनाता है। हवा, पानी, भूमि, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही मानव की गतिविधियां और निर्माण भी इस पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण का महत्व सिर्फ शारीरिक जरूरतों तक सीमित नहीं है, यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित करता है। हरे भरे जंगल, स्वच्छ नदियां और शांत वातावरण मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसलिए पर्यावरण को संरक्षित रखना न सिर्फ हमारी जरूरत है बल्कि यह हमारा दायित्व भी है। इसके अलावा यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी बनाए रखने में मदद करता है जो समाज की पहचान का एक हिस्सा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक का भी कर्तव्य है, तब तक हम सफल नहीं होंगे। हमें अपनी दैनिक जीवन शैली में छोटे छोटे अनेक बदलाव करने होंगे, जैसे कि बिजली और पानी का संयमित उपयोग, पैदल चलना या साइकिल से चलना और कचरे का सही निपटान करना। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण दे सकते हैं। औषधियां दे वृक्ष ये, झट पीड़ा हो दूर, वृक्ष सिखाते हैं हमें जीवन का दस्तूर। सावन में झूले डालें, लोग मनाते तीज, आओ मिलकर रोप दें आज वृक्ष के बीज।

प्रकृति से छेड़छाड़ हमें विनाश की ओर ले जा रही है। हमें समझना होगा कि हमारा जीवन तभी बच सकता है जब तक जल, जंगल और जानवर बचेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करना होगा, पर्यावरण से प्रेम करना होगा, उसका संरक्षण करना होगा, वनों की कटाई को भी रोकना होगा। जीवन का मोल जाने और प्रकृति का सम्मान करें, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़कर सभ्य समाज की पहचान बने। सच यही है कि प्रकृति ने हमें हमेशा दिया है, यही वक्त है प्रकृति को कुछ वापिस लौटाने को।

0: युवाओं की क्या भूमिका रहती है पर्यावरण के प्रति अलख जगाने में, हमने जाने उनके विचार।
1: नमस्कार, मेरा नाम अंकिता चौधरी है। आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जलधारा की शुरुआत से लेकर उसके समुद्र में पहुंचने तक प्रदूषण फैलाने वाले कई तत्व उसमें मिल चुके होते हैं। ये उद्योग, कृषि और मानव गतिविधियों से जुड़े तत्व होते हैं जो प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में गिरावट आ रही है और खास तौर पर मीठे पानी का इकोसिस्टम इससे प्रभावित हो रहा है। इसके मुताबिक जितने प्राकृतिक आंतरिक स्थलों वेटलैंड, इसमें पीटलैंड, दलदल, झीलें, नदियां, तालाब आदि शामिल है की निगरानी की गई, उसमें ये बात निकल कर आई कि 1970 से लेकर 2015 तक 35% वेटलैंड खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरावट जंगलों में गिरावट के मुकाबले 3 गुना तेजी से हुई है। अब जितने भी वेटलैंड वाले इलाके वाले आवास बचे हैं उसमें 65% ऐसे हैं जिन पर मध्यम से लेकर उच्च स्तर का खतरा है। इसके अलावा 37% नदियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से मुक्त तौर पर नहीं बह रही है। आइए आज के इस अवसर पर हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, साथ ही प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण बनाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और वर्षा जल का संरक्षण करें। धन्यवाद।
2: मैं श्रीराम प्रजापत, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को जागरूक करने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में से एक मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये विभिन्न प्रकार से होता है, जल, वायु, मिट्टी, अनेकों प्रकार से करते हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि प्रत्येक आदमी कम से कम एक ही पेड़ लगाए भले ही, लेकिन उस पेड़ को वो बड़ा करें, उसका लालन अपने पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करके उस पेड़ को पूरा खड़ा करें। साथ ही वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नरेगा के तहत मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लगवाएं एवं मेट एवं उन अधिकारियों जो अधिकारी उनसे काम ले रहे हैं उनको प्रशिक्षण देकर पर्यावरण संरक्षण का कार्य करवाया जा सकता है। अगर मनुष्य पर्यावरण से जुड़ेगा, वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो एवं पशु पक्षी के माध्यम से हो, वो मानसिक रूप से भी, मानसिक तनाव भी उसका कम होगा। हमारे पूर्वज भारतीय लोग तो शुरू से ही पर्यावरण के प्रति जुड़े हुए रहे हैं। धन्यवाद।

0: अगर प्रदूषण जो इतना फैलाएंगे तो आपदाओं से कैसे बच पाएंगे। कुछ नहीं होगा केवल दिवस मनाने से, पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होगा पेड़ लगाने से।
1: मैं खिया राम, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नागौर में कार्यरत हूं। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम है विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। यह प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने का एक वैश्विक संकल्प है। हर साल लगभग 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिससे लगभग 2/3 केवल एक बार उपयोग के लिए होता है। उपयोग करके जल्दी फेंक दिया जाता है। यह अल्पकालिक उपयोग की वस्तुएं तालाबों, पोखरों, नदियों, महासागरों को प्रदूषित करती है, जो मनुष्य अन्य जीव जंतुओं के फूड चैन में प्रवेश करती है और माइक्रो प्लास्टिक के रूप में शरीर में जमा हो जाती है, जिससे मनुष्य, बेजुबान जीव जंतु विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यंत विकट परिणाम मिलते हैं, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमें इंसान होने के नाते कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का दैनिक जीवन में उपयोग बंद करें, कागज या कपड़े के बने झोले या थैले का उपयोग करें, प्लास्टिक को कहो ना, पर्यावरण को दो हाँ, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें, प्रकृति का संरक्षण जीवन का संरक्षण, तालाब नदी पोखर को प्रदूषित नहीं करें, जल का दुरुपयोग नहीं करें, जल है जीवन इसे बचाओ हर क्षण, डीजल पेट्रोल जनित वाहन का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करें, उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। मत करो प्रदूषण का शोर, प्रकृति मांगे बस थोड़ा गौर। और हर वर्ष हमें कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाओ, एक पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने इंसान को पैदा किया है, अपने अस्तित्व के लिए इंसान को उसकी जरूरत है। प्रकृति से हम हैं, ना कि प्रकृति हमसे। धरती हमारी अनमोल धरोहर है, आओ करें इसकी देखभाल हर ओर। लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आगामी वर्षा ऋतु को मद्देनजर रखते हुए बरसात के पानी को स्टोर करें, पानी की बचत करें। जल है तो कल है, जल है जीवन, इसे बचाओ हर क्षण। धन्यवाद।
0: चलो आज इस जमी को फिर से जन्नत बनाते हैं, रोज ना सही आज 2-4 पौधे लगाते हैं। आप हैं?
2: नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, उपनिदेशक महिला अधिकारिता नागौर। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए अपने पर्यावरण को बचा के रखेंगे। जो भी प्रकृति ने हमें संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनका अनुकूलतम उपयोग करते हुए उनका हम एक समुचित रूप से दोहन करेंगे, उनका अपव्यय रोकेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम मिनिमलिज्म की तरफ आगे बढ़े, यानी कि हम कम से कम रिसोर्सेज में एक बेहतर और सहज जीवन जी सके, ऐसी जीवन पद्धति को अंगीकार करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये प्लास्टिक मुक्त विश्व बनाने की दिशा में आज ये संकल्प लिया जा रहा है कि हम कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, वन टाइम यूज वाली प्लास्टिक आइटम्स को हम हतोत्साहित करें और ये कोशिश करें कि हम हर प्रत्येक वर्ष हर परिवार या हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम भी अपना सक्रिय भाग ले सके। आप सभी जानते हैं हमारा विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नोडल डिपार्टमेंट है। इसके तहत भी देश भर में बेटियों के जन्मोत्सव पर वृक्षारोपण कर कन्या वाटिकाएं विकसित की गई है। तो आप सबसे आज के इस विशेष दिवस पर यही आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर अपनी पर्यावरण को बचाएं, इस धरती को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सहज जीवन जी सके। जय हिंद, जय भारत।
0: धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। पानी, हवा और पेड़ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हम सब ने हमेशा से पर्यावरण के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। हमें भविष्य में जीवन को बचाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।
3: नमस्कार, मैं अजय कुमार मीणा, अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग नागौर। मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास अवसर पर आप सभी से कुछ शब्द साझा करना चाहता हूँ। हर साल 5 जून को हम यह दिवस मनाते हैं, न सिर्फ पर्यावरण के महत्व को समझने के लिए, बल्कि यह संकल्प लेने के लिए कि हम अपनी धरती, जल, वायु और हर जीव की रक्षा करेंगे। यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हमारी विरासत है। प्रकृति हमें जीवन देती है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियाँ पानी और मिट्टी अन्न। इसलिए अगर हमने अपने पर्यावरण को न बचाया तो भविष्य में जीवन की कल्पना भी कठिन होगी। आइए हम सब आज मिलकर ये संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, जल और ऊर्जा की बर्बादी रोकेंगे। रोकेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। पेड़ों से ही हरियाली की शान है, हरियाली ही इसका मान है। अगर बचानी है ये

ना तो पर्यावरण ही इसकी पहचान है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम मानव की होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारा जीवन निर्भर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता का होना ही अच्छे दिनों के आने की आहट है। इसके संरक्षण के संकल्प के साथ ही मानव जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। इसी से मानव जीवन में खुशहाली आती है। मानव का पर्यावरण से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन का आधार बनता है। मैं कुछ कविता, कुछ पंक्तियां पर्यावरण के ऊपर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। धारा

भी बह रहा है कि सूखी नदियां चिड़ा रही है। फंसी हो कश्ती जो रेत में तो कहीं किनारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन

हरा भरा ना हो ये जहां तो कहीं गुजारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन में तारा नहीं मिलेगा। कुदरत कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। धन्यवाद, आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: वन विभाग की ओर से हमें बताया।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सज्जन कनवाड़िया, सहायक वन संरक्षक, वन विभाग नागौर, राजस्थान। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं ताकि हम पर्यावरण के महत्व को समझ सकें, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें और इसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकें। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल लाखों टन प्लास्टिक हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों में और जमीन को दूषित करता है, तो यह न केवल हमारे इस पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कपड़े अथवा जूट के थैले का उपयोग करें ताकि हमारे पर्यावरण को हम संरक्षित कर पाएं, इसे बचा पाएं। हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जंगल और समस्त जैव विविधता जो है, ये प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। ये न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को भी बनाए रखते हैं और हमारे जितने भी जल स्रोत हैं और पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको सुरक्षित करते हैं। इस दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट घोषणा 2025 में राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मिशन हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश में प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। इस हेतु वन विभाग के द्वारा समस्त जिलों में निर्धारित लक्ष्य अनुसार पौधों की तैयारी की जा रही है, जिसे हम इस आगामी मानसून सत्र में 1 जुलाई से आमजनों को राजकीय या गैर राजकीय विभाग अथवा संस्थाओं को वितरित करेंगे। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पर विभाग के द्वारा विकसित इको टूरिज्म साइट लवकुश वाटिका गोगेलाव का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य नागौर शहर के वासियों को स्थानीय वन और वन्य जीवों से रूबरू करवाने का है। साथ ही इसका उद्देश्य स्थानीय वानस्पतिक जैव विविधता तथा वन्य जीवों के आश्रय स्थल को विकसित करना है। नागौर जिला वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें विशेषकर चिंकारा, काला हिरन, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर

0: घायल बीमार वन्य जीव मिलता है तो वन विभाग को तुरंत सूचित करें ताकि हम समय पर प्राथमिक उपचार करवा पाएं। साथ ही मैं अपील करता हूं कि सभी पक्षियों हेतु अपने घरों में सार्वजनिक स्थानों पर परिंडे बांधकर नियमित रूप से उसमें पानी डालें। आगामी मानसून सत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण करें। पुराने लगाए गए पेड़ पौधे अथवा प्राकृतिक रूप से उगे हुए जो स्थानीय प्रजाति के पौधे हैं उनकी सुरक्षा और संधारण करें ताकि हम इन्हें पेड़ बना पाएं। तो मैं आप सभी से वापस अपील करता हूं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सक्रिय भागीदारी निभाएं, क्योंकि ये कार्य केवल किसी सरकार विभाग या संगठन का ही नहीं है, इसमें हम सबको मिलकर के आगे आना है। हम सब मिलकर एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, इसी आशा के साथ नमस्कार।
1: आप हैं पर्यावरण प्रेमी और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्री हिमता राम बांबू।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे और अब तक आपने पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं?
3: देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व मनाया जाता है और ये मनाने का मकसद यही है कि जल को बचाओ, जंगल को बचाओ, जीवों को बचाओ, जमीन को बचाओ, जैविक को बचाओ और पेड़ों को बचाओ, जंगलों को बचाओ। तो ये जो एक पर्यावरण एक बहुत बड़ा, इसमें कई तरह के घटक है, तो ये बहुत बड़ा मामला है। आज इस पर्यावरण जो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित है। यार, ये जो बहुत मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को कोरोना में पता लगा कि भी प्राण वायु ऑक्सीजन क्या है। तो ये ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, तो सबसे जो मैंने मेरे जीवन में पेड़ में भगवान को पाया और पेड़ देता ही देता है। एक बार आप बड़ा कर दो, 1-2 साल उसको बड़ा कर दो, 3 साल कर दो, फिर वो जिंदगी भर अपनी जिंदगी भर देता रहेगा। आदमी की जिंदगी तो 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल से ऊपर तो कोई बहुत कठिन है, 100 साल तक तो कोई बिरला ही पहुंचा है, बाकी तो आदमी की जिंदगी तो बहुत कम हो गई, धीरे धीरे कम हो रही है।
2: आपने कितने पेड़ लगा दिए आज तक?
3: मैंने जो मेरे जीवन में जो 50 साल से 1975 में शुरू हुआ और मेरे जीवन में मैंने 7.5 लाख पौधे अब तक लगा चुका हूं। और जिस पौधों में मेरी प्रेरणा से, और नागौर जिले में 472 गार्डन बन गए छोटे छोटे मेरी प्रेरणा से, और चल रहा है मामला जिसमें से 5 लाख पौधे तो अभी पेड़ बन गए हैं। और हमारा जो अभियान है, जो हमारे जब लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, वो मेरे से प्रेरणा लेकर के बात करते हैं, जब करते हैं कि भाई मैंने हमने कई तो रेडियो स्टेशन से ही बात सुनते हैं और मेरे को जब मिलते हैं वो कहते हैं कि साहब आपने रेडियो स्टेशन पर क्या कि पेड़ तो देते ही देते हैं, कुछ नहीं लेते, एक बार बड़ा कर दो, तो हमने इतने लगा दिए, हमने इतने लगा दिए, हमने इतने लगा दिए, ऐसे करके लोग हजारों लोग मेरे से लाखों लोग जुड़ गए। और आज जो मेरा जो काम है, मैं तो इससे बड़ा एक मतलब खुशी महसूस कर रहा हूँ कि लोग जुड़ करके जो इस पर्यावरण को बचाने में लगे हुए, जंगल ही बचा रहे हैं, जल को बचा रहे हैं, हमारी जो सरकारें भी काम कर रही है। तो इसलिए क्या है कि ये जो मेरे तो मेरे जीवन में जल को बचाया, जंगल को बचाया, हमने क्या है कि ये खुद का एक खेत था 36 बीघा, उसको 14,000 पौधे लगा करके जंगल बना दिया। उसमें हरिमा गांव में वहां उसका नाम रखा पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र। उसमें 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, हर रोज उसको 20 किला चुगा डालना और उनकी सेवा करनी। इतना ही नहीं, सांप, गोईड़े, गोपाड़, नेवले भी उसमें है और उसमें एक तालाब भी बना रखा है। तो ये जानवरों की जो प्रकृति का जो है, भगवान ने जो धरती पर ये जो जीव है, प्रकृति को जो बनाया है, इसको हम सबको बचाना है। ये बचेगी तभी तो हम बचेंगे। इस प्रकृति को नहीं बचाया तो हम भी नहीं बच सकेंगे। तो इसलिए क्या है कि जो ये तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान का मुख्य कारण यही है कि बड़े बड़े जंगल थे वो कट गए, बड़े बड़े पहाड़ों को खोखला कर दिया, जमीन से कुछ छोड़ा नहीं, जमीन से जो खोखला कर दिया, जमीन से वैज्ञानिकों ने इतना कर दिया कि बड़ी बड़ी मशीनें बना दी। आसमान से जमीन से पानी खींचने के लिए तो 40 हॉर्स पावर, 50 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर मशीनें बना दी। बट मैं ये कहता हूँ कि भाई आसमान से पानी खींचने के लिए मशीनें कहाँ है, वो तो एक केवल पेड़ ही है। जो ज्यादा हरियाली होगी, ज्यादा होगी तो वर्षा ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या है कि मानव मात्र को इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरा जो अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जो आदमी जीवन में एक पेड़ अपने हर जन्मदिन पर लगाए, बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्मदिन पर पौधा लगाए, मनु अपना खुद का जन्मदिन आता है, आदमी जीवन में 70 साल 80 साल जब उसकी उम्र होती है तो 80 पेड़ तो लगा करके चाहिए। क्योंकि पेड़ नहीं लगाएंगे तो प्राण वायु ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? प्राण वायु ऑक्सीजन का जो देखा जाए तो एक बच्चा जन्म लेकर के वैज्ञानिकों सोंद के अनुसार आप देख लो 14.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। अगर पेड़ ही नहीं लगेगी तो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? तो इसलिए करने के लिए आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मैंने जो मेरे जीवन में जो काम किया है और आज जो 5 लाख पौधे पेड़ बने हैं उसका वैज्ञानिकों के सोंद के अनुसार 15 अरब रुपयों की प्रत्येक वर्ष ऑक्सीजन जो हवा में उत्सर्जन कर रहे हैं, तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मानव जीवन को, इस प्रकृति को बचाया जाए, इसका संरक्षण किया जाए, जल को बचाया जाए, जंगल को बचाया जाए, जो वन्य जीव है बेचारे मूक जीव है जिसके पास बोर्ड का अधिकार नहीं है उनको भी बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, तभी आदमी का जीवन बचेगा। और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले समय में बरसात आने वाली है, आप ज्यादा से ज्यादा जो गाँव में जो खेत है, खेतों में छोटे छोटे बांट उग जाते हैं, उस बांट को भी खेतड़ी बनाए और जगह जगह पेड़ बनाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। और पेड़ नहीं लगेंगे तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण जो ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो आदमी को बहुत बड़ा मानव जीवन को, प्राणी मात्र को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और पर्यावरण की रक्षा करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
4: हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाएं।
1: विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारा अनमोल खजाना है, इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब आज के दिन मिलकर अपनी पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प लें। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, ये था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष रूपक धरती कहे पुकार के। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया मनोज सारण ने, आलेख वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छिपा का, और प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे रूपक धरती कहे पुकार की। प्रस्तुति सहायक एवं वाचक स्वर मोहम्मद शरीफ छिपा के थे और इस रूपक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से FM बैंड पर प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने ज़माने के।

आइए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं, जाबाज फिल्म का गीत। इसे गाया है किशोर कुमार और सपना मुखर्जी ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं हथकड़ी फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप सुन रहे थे गाने नए गाने पुराने जमाने के। 10:30 हुए हैं, लीजिए आप सुनिए गाने नए तराने नए। प्रोग्राम का पहला गीत

लीजिए अब सुनिए फिल्म खोसला का घोसला का ये गीत, इसे गाया है कैलाश खेर ने।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर yout

टी एच ई एक्स पी आर ई डबल एस एन ए जी ए यू आर @gmail.com पर और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

लीजिए अब पेश है एक्शन रिप्ले फिल्म का गीत। इसे गाया है दलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा ने।

आइए अब हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता काक का गाया फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ये गीत।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।
0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक

0: हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत
2: आकाशवाणी समाचार के साथ, मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
3: At 5.25%.
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4

0: संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें,

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे सखी सहेली।

है, खुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे।

हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही

शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंडीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के विशेष प्रोग्राम से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
2: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है, सब कुछ हमें देती है। इसको कुछ हम भी देना तो सीखें, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।
1: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और CSIR सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए MOU किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्य

0: विद्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का गांव की प्राचीन बावड़ी में जल पूजन का भी कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, SOS आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 1:05 हुए हैं, फिर से सुनेंगे आप विविध भारती।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

सुबह ये गाना आपने सुना, फिर वही दिलाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी। अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया, जहां चलो हम दोनों चले वहां, जहां दिन भर महुआ पर झूले रात को चू पड़ते हैं फूल, जहां दिन भर महुआ पर झूल रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया, जहां चलो हम दोनों चले वहां, विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बाहर के झरना नदी चंचलता नीले नंबर अंबर चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम, और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2x4 बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर जब पैरों में पॉलीथिन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना

सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है। अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे, नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं। गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी की बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटकेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है, एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है, जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे, जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए। पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़, इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गारे में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे। साधना और जॉय मुखर्जी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण कमले।

सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो वंदे।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
0: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
2: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्रपाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
2: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहां के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु यह सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी

0: बंदी जानबूझकर तोड़नी है, ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़ पर हमला कर दिया।
0: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुल्लर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मांगो जाए जन जीवन चले, यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।
1: निर्दय लाठीचार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
2: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
1: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
3: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
1: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठीचार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।
4: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नगरीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और न्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से

0: सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा

0: लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार

0: हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ई बो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।

0: हेलो
1: हेलो सहेली।
0: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
0: मैम मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर हिसार से, हरियाणा से। हाँ
1: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए, आप क्या
0: जी
1: करती
0: मैम।
1: हैं?
0: मैं घर पे ही, अपना बुटीक है मेरा, मैं
1: ओहो,
0: सिलाई करती हूँ।
1: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
0: हाँ जी
1: तो इस समय अच्छा चल रहा है।
0: हाँ जी
1: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
0: हाँ जी महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के,
1: अरे
0: सारी
1: वाह,
0: गारमेंट्स बनाती हूँ मैम। हाँ
1: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए,
0: जी
1: आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है,
1: बहुत प्यारा
0: यही
1: गाना है,
0: गाना।
1: तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते। मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंदा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे। मैम
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है। हाँ
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: मैम,
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम बैठी है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने
1: जी
0: का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे
1: यस
0: से अपनी
1: मैम।
0: पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं आप?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा,
1: 10वीं पास।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है,
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे उनकी आवाज में। तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में कम निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना है।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है जब

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से।
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से। जी
0: अच्छा रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी आप क्या करती हैं।
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा तो
1: जी
0: आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: जी ने।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना।
1: जी जी मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ हैं, कड़क वाली की अच्छी वाली।
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं।
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: जी मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी।
0: गीत सुनना चाहती हैं।
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: दो तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे
0: बिल्कुल
1: मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी, तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह से मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्तर संगीत सविता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर
1: हाँ,
0: रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम
0: जी
1: 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
1: हाँ,
0: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है,
0: जी
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ में मतलब फल लगते रहे कि
0: जी
1: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं जो आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ।
0: जी
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम
1: मुझे
0: बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो आप
1: बीमारी सही कर दे, डांस और
0: बिल्कुल
1: म्यूजिक तो ऐसी

0: चीज
1: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
0: हाँ फिट भी रहते हैं बहुत।
1: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है, तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ।
0: हाँ
1: रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है, और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल।
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है
0: बहुत
1: छोटी
0: बढ़िया
1: सी
0: तब तो आप
1: जी
0: पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी जी जी जी
0: तो
1: समझ
0: बताइए
1: लीजिए।
0: जी, तो आप
1: और
0: बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा, आपने
1: और
0: लगा रखे हैं?
1: जी हाँ, लगा रखे हैं। और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
0: अरे वाह, बहुत
1: रखते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।

0: गर्मियों के दिन में सोचिए, वो चिड़िया पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से जो
1: हाँ
0: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: जी,
0: और
1: चिड़ियों की
0: साथ
1: चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो भी तो बदले में हमें
1: जी
0: अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
1: हाँ,
0: तो
1: खुश होती हैं, सब
0: बिल्कुल
1: आती हैं, सब खेलती
0: जी,
1: हैं, तो
0: जब
1: बड़ा
0: वो
1: अच्छा लगता
0: चहचहाती
1: है।
0: हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना। तो
1: जी,
0: अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: बड़ौरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
1: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
0: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
1: अच्छा,
0: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
1: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
0: गाना सुनना अच्छा लगता है।
1: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
0: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
1: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
0: मुझे जाकवर सिंह ने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
1: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है।
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है।
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, बीएससी
0: अरे वाह,
1: नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है। यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना। जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो।
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती। काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के
1: हाँ
0: काम है ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है, तो आप क्या क्या
1: मुझे
0: चीज़ें
1: आज
0: सिल
1: बहुत
0: लेती हैं।
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली को मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है। तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों बेटियों का
1: हाँ
0: बर्थडे। अच्छा
1: हाँ और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा
1: तो हैप्पी बर्थडे की गीत तो सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़ें और आपका नाम
1: हाँ
0: रोशन करें। जी, तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं।
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले
1: हाँ,
0: हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है।
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो
1: है।
0: बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा।
1: जियो हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको, पसंद करिए ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूं और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी, बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखे, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी, वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं?

और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के जिनमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं और समय है कार्यक्रम भीववाणी का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, इसलिए कुछ हमारी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। फ्रेंड्स, आज के दिनांक है 5 जून और आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि अगर पेड़ ना हो, शुद्ध हवा नहीं हो, साफ पानी नहीं हो, तो क्या हमारा जीवन संभव है? शायद नहीं। इसलिए पर्यावरण केवल हमारे आसपास की प्रकृति नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। और इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके, इसके संरक्षण को लेकर। इसकी शुरुआत दोस्तों 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है। आज दुनिया कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे हैं कि पर्यावरण बचाने का काम सरकारों और बड़ी संस्थाओं का है। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव की शुरुआत हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही होती है, जैसे एक पेड़ लगान बैग अपनाना और अपने आसपास सफाई रखना। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं। आज के समय में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनः लगातार काम कर रहा है। लेकिन याद रखिए, केवल एक दिन पर्यावरण की बात करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तभी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। तो दोस्तों, युवाणी का सफर यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।

0: की सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष परिचर्चा, आकाशवाणी और युवा आकांक्षाएं, जिसमें भाग ले रही हैं कीर्ति सिखवाल, प्रिया निम्बावत, कशिश जोशी और दिव्या सोनी, और संचालन कर रहे हैं अशोक कुमार गोयल।
8: मित्रों, आकाशवाणी अपनी सेवाओं के 90 वर्ष पूर्ण कर रही है 8 जून 2026 को। 8 जून 1936 से आकाशवाणी के प्रसारण प्रारंभ हुए थे और तब से निरंतर आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है। और आकाशवाणी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो तीन हमारे जो ध्येय हैं उनको लेकर हम प्रसारित करते हैं। और वो ध्येय हैं, एक तो टू एजुकेट पीपल, टू इन्फॉर्म पीपल एंड टू एंटरटेन पीपल। और इन्हीं तीन सूत्रों को लेकर हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि एंटरटेनमेंट के लिए आप जानते हैं कई प्रोग्राम्स होते हैं, फिल्म म्यूजिक विशेष तौर से होता है, फोक म्यूजिक होता है, लाइट म्यूजिक होता है, गजलें होती हैं, एल्बम सॉन्ग्स होते हैं, और भी

0: जो झलकियां होती हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो टू एजुकेट पीपल, तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का तो एक सेगमेंट छिपा रहता है। तो वो हम उसको चाहते हैं कि हर हमारे कार्यक्रम के थ्रू जो भी लिसनर्स हैं वो उनको कुछ न कुछ जानकारी मिले, उनको कुछ ज्ञानवर्धन हो, तो वो एक एजुकेशन की फील्ड का काम वो हो रहा है। और टू इन्फॉर्म पीपल के लिए हम जो हमारे न्यूज़ हम प्रसारित करते हैं, समाचार जो कि आकाशवाणी के समाचार सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं, वो हम तब से लेके अब तक ये तीनों रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में कुछ युवाओं को हमने आमंत्रित किया है, और चूंकि ये 90 वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स के रूप में ही होता है, तो उस पर हमने कई प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं। उनकी एक सीरीज हमारी चल रही है काफी समय से, और उसी सीरीज के तहत आज हमने एक ये परिसंवाद रखा है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले जो भी आज इस परिसंवाद में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में है, मैं चाहूंगा एक एक करके उनसे परिचय लिया जाए उन्हीं की आवाज में। तो सबसे पहले आप बताएं आपका नाम और थोड़ा परिचय दें।
1: नमस्कार, मेरा नाम कशिश जोशी है और मैं अभी BSc BEd फाइनल ईयर के अंदर हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका। आपका
2: नमस्कार, मेरा नाम प्रिया निम्बावत है और मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ अभी।
0: जी
3: नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति सिकवाल है और मैं अभी MSc जूलॉजी अध्ययन कर रही हूँ।
4: नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सोनी है, मैंने BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ।
0: और मैं अशोक कुमार गोयल इस परिचर्चा परिसंवाद के संचालन के लिए उपस्थित हूँ। तो हम बात अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जो आज का यूथ है, एक समय था जब आकाशवाणी बहुत ही एकमात्र मतलब एकाधिकार था, इसकी मोनोपोली थी, क्योंकि कोई और दूसरा संचार का, मनोरंजन का या सूचना का साधन नहीं था। लेकिन आज बहुत विकल्प उपलब्ध है श्रोताओं के पास, तो जो यूथ है उसके पास बहुत विकल्प है। लेकिन फिर भी आकाशवाणी का जो ध्येय है कि यूथ को भी कुछ हम दें, मनोरंजन के अलावा भी कुछ उनके जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो उनको हम पूरा करें, उनके लिए कुछ ज्ञानवर्धक चीजें लाएं, कुछ नई चीजें लाएं, कुछ अलग अलग फॉर्मेट में हम प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा हम आपके अनुभव चाहेंगे, सबसे पहले जानना कि भाई आपका रेडियो को लेकर कुछ अनुभव है, आपने कभी रेडियो सुना है या उसके बारे में सुना है या उसके प्रोग्राम से कभी कुछ लाभ लिया है, तो वो थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, कशिश कुछ बताएं।
1: जी एक्चुअली जब हम दादा और पापा से सुनते थे कि रेडियो ऐसा होता था, जब हमारे टाइम कुछ भी नहीं था, जैसे आजकल तो टीवी मोबाइल सबके अंदर है, तो हम तो उससे कनेक्ट है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हमारे टाइम रेडियो हुआ करता था, तो इच्छा जगी कि रेडियो क्या था, तो हमने भी सुनना स्टार्ट किया, हम भी उससे कनेक्ट हुए, तो ऐसा लगा कि सही में वो चीज थी जिस पे हम वाकई में विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आजकल 10 जने 10 चीजें अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन रेडियो ही एकमात्र ऐसा था जिस पे अपन अभी भी विश्वास कर सकते हैं।
0: जी, यानी कि ऑथेंटिसिटी जो की है वो इसका एक बहुत बड़ा जो है हम कहें कि क्वालिटी है, या इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है कि इस पर हम सुने और विश्वास करें।
1: जी,
0: और आपसे जानना चाहूंगा प्रिया कि तुम बताओ कि तुमने रेडियो के बारे में केवल सुना है या रेडियो को भी सुना है?
2: मैंने रेडियो को सुना तो नहीं है, क्योंकि उस समय रेडियो और बंद हो गए थे, घर में सफाई चल रही थी, तो रेडियो निकाला तो मम्मी को पूछा कि रेडियो कैसे क्या बजता है, तो मम्मी ने बोला कि अब तो बता मतलब सही नहीं करवा सकते इसको, लेकिन फोन में जैसे FM रेडियो के जो चैनल्स आते थे, हम उसको रोज रात को छत पे जब गर्मियों में सोते थे तो सुनते थे FM रेडियो के जो चैनल्स आते थे उनको।
0: जी, तो अब यहाँ चैनल अगर नागौर की बात करें तो आकाशवाणी का चिरमी चैनल, ये रेडियो का
2: जी
0: चिरमी चैनल है FM पर, तो इस ये सुना है आपने?
2: जी, रोज रात को जैसे जो फरमाइशें होती थी तो उनमें हम सुनते थे इन चैनल्स को।
0: तो वैसे आप क्या सोचते हैं रेडियो की क्या उपयोगिता है आज के समय में, विविध किस प्रकार से आकाशवाणी प्रासंगिक है? रेडियो तो है, उसमें कई चैनल है, लेकिन हम आकाशवाणी की बात करते हैं।
2: मुझे तो ये लगता है कि जितना मैंने समझा है इन चीजों को, या अभी बहुत सारे साधन है हमारे पास न्यूज के जो हमें समाचार प्राप्त करने हैं, लेकिन उनमें एक जो सही जो कंटेंट है वो नहीं मिल पाता है, हमें जो सही चीज है, हमें जानकारी जो प्राप्त करनी है वो हमें नहीं मिल पाता, लेकिन रेडियो से हमें जो सच चीज है वो हमें प्राप्त हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। कीर्ति तुम बताओ कि जो मतलब हम इतने सारे माध्यम हैं अब तो हम कहें कि रेडियो सेट तो हालांकि अब नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ हम आकाशवाणी सुन सकते हैं, उसका जो एक रूप है वो चेंज हो गया, अब मोबाइल पर भी हम सुन सकते हैं, न्यूज ऑन एयर ऐप है उससे हम सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, अब वो बाउंडेशन भी नहीं है कि यहाँ तक इस केंद्र की रेंज यहाँ तक है इसलिए इसको इस क्षेत्र के लोग ही सुन सकते हैं, अब किसी भी चैनल को हम कहीं भी सुन सकते हैं। सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो एक हमारा ऐप भी है, क्या तुम्हें उस ऐप के बारे में पता है?
2: हाँ सर, मुझे पता है। अच्छा। और ये एक ऐसा मतलब विश्वसनीय ऐप है जिसपे आजादी से लेके आज तक लोगों के मन में विश्वास जगा है इसको लेके, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे मतलब खुद को पहचान दिला सकते हैं हम, और साथ ही आज के युवाओं का कुछ जस्ता भी होता है जो गलत संगत की तरफ बढ़ रहा है, उसे सही राह पर लाने में भी आकाशवाणी काफी हेल्पफुल है। जैसे उन लोगों को अवसर देकर और भी प्रतियोगिताएं या फिर मंच देकर भी आकाशवाणी उन्हें आगे बढ़ा रहा है। तो हाँ सर,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक समय था जब बहुत से कलाकारों को आकाशवाणी ने प्लेटफॉर्म दिया और आकाशवाणी से माध्यम से ही वो आगे बढ़े, जिसमें आप चाहे लता मंगेशकर की बात हो और भी बहुत सारे जो कलाकार हैं, गायक कलाकार, वो उस समय रेडियो से ही आगे आए। तो रेडियो का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है और कई मायनों में इसने जो है समाज में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है। लेकिन अब 90 वर्षों का हम जब बात कर रहे हैं तो एक हमारा भी एक स्वमूल्यांकन का या कहें आत्मनिरीक्षण का समय है कि रेडियो को भी अपने समय के साथ वो कुछ बदलाव हमने किए हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह बदले हैं नहीं बदले हैं और श्रोताओं की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, ये तो हमें श्रोता ही बताएंगे और यूथ की बात करें तो वो आप लोग बताएंगे। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा दिव्या कि जो रेडियो है नागौर चैनल, कभी आपने सुना है या आपने नहीं सुना, आपने अपने माता पिता से सुना है कि उन्होंने सुना है आकाशवाणी को, चाहे वो नागौर हो या उस समय नागौर नहीं हो कोई और दूसरे केंद्र हो, आकाशवाणी तो 90 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है।
4: रेडियो को लेकर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहना चाहूंगी, तो जैसे कि देशभक्ति के जो गीत होता है 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे जो भी गीत वगैरह होता है, वो हम एक YouTube पे हम हमारे जो पसंदीदा गाने हैं वो हम सिर्फ सर्च करके सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो पे जो पैट्रियोटिक जो सॉन्ग्स है, पुराने जो सॉन्ग्स है, जिसको सुन के हमें सच्ची देशभक्ति की भावनाएं हमारे अंदर जगती है, वो हमें रेडियो के माध्यम से मिला है। और मैं कहना चाहूंगी, आपने कहा लता मंगेशकर जी के गाने, ओल्ड इज गोल्ड, वो मेरे एक ताई जी है जो बेंगलुरु में रहते हैं, वो यहाँ आता है तो सर्दियों के टाइम में आपको पता ही होगा सब बाहर धूप सेकता है, तो हम बाहर बैठ के जब वो रेडियो ऑन करते हैं तो वहाँ ओल्ड इज गोल्ड यानी कि 90s के वो गाने चलते हैं, वो बहुत ही सुखद होता है, मतलब
0: अच्छा लगता है। हाँ। आजकल जो म्यूजिक है, जो हम फिल्म संगीत सुनते हैं उसमें जो, हालांकि रेडियो भी यानी कि आकाशवाणी भी वो हम प्रसारित करते हैं, एक हमारा वो है कि वो वल्गर ना हो और इस तरह के नहीं हो, जैसे कि हम जो प्राइवेट चैनल दे सकते हैं हम बहुत सी चीजें वो हम नहीं देते, सेंसर करते, लेकिन फिर भी नई फिल्मों के बहुत सारे गाने हम भी प्रसारित करते हैं। तो हमने भी समय के हिसाब से परिवर्तन किया है, लेकिन यूथ का तो हमारा आधा घंटे डेली का एक जो है ना पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है, वो यूथ के लिए होता है, उस पर यूथ को ध्यान में रखकर ही उसको डिजाइन करते हैं कि भी इसमें ये चीजें होनी चाहिए, करियर की बातें होनी चाहिए, यूथ से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर हम उसमें चर्चा करते हैं, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो यूथ में बढ़ता असंतोष हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे उनके ज्ञानवर्धन की बात हो, उनके जो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, तो वो एक चर्चा के रूप में, आज की बात के रूप में वो हम करते हैं। इसके अलावा करियर की बातें होती है तो यूथ को लेकर हम करते हैं। तो आप क्या सुझाव भी अपना देना चाहेंगे? कुल मिला के मैं आपसे पूछूंगा कशिश की, आपका क्या कहना है कि क्या और किस प्रकार से रेडियो उपयोगी हो सकता है, आकाशवाणी उपयोगी हो सकता है?
1: हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे जैसा ही कोई हमारे लिए आवाज उठा रहा है तो हम उससे और भी ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं कि हाँ वो हमें प्रदर्शित कर रहा है, हमारे लिए बोल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई ऐसा आए जो जैसे हमारे लिए बोले, हमारी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनने चाहिए और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होनी चाहिए,
0: यानी कि यूथ के बीच में जाना चाहिए आकाशवाणी को, उनसे बात करनी चाहिए और उनके मन को टटोलना भी चाहिए।
1: जैसे आजकल करियर के लिए अलग अलग हमें कंफ्यूजन्स होती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही आकाशवाणी हमें प्रोवाइड करवा सकता है।
0: बिल्कुल करवा रहे हैं हम, लेकिन उसकी एक मतलब सीमा है, लेकिन थोड़ा और इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी या जो
1: जैसे हमें साहित्य के बारे में जानना है, हमें कविता के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए जिससे हम और भी जान सकें।
0: और यूथ को एक प्लेटफॉर्म तो ये मिलता ही है, इससे जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के लोकल यूथ को लेकर, वोकल फॉर लोकल, और ये तो लोकल रेडियो स्टेशन है, इसका नाम है लोकल रेडियो स्टेशन आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, वो लोकल मतलब कि नागौर जिले के जो रहने वाले लोग हैं उसमें यूथ हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, सबके लिए उनको ध्यान में रखकर ही इस केंद्र का आगाज किया गया था और वो उसी को लेकर हम चलते हैं। तो यहाँ लोकल मतलब जो यूथ है उसको भी हमें और ज्यादा कनेक्ट करना है।
1: जी
0: प्रिया, तुम बताओ कि कुछ और तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है कि और क्या किया जा सकता है, और मतलब कि किस प्रकार से और इसको पॉपुलर किया जा सकता है?
2: जी सर, वर्तमान में हम ये देख सकते हैं कि युवाओं के भविष्य का सबसे जो बड़ा खतरा है वो बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी ये ऐसी चीज है जिसमें भविष्य सब जो व्यू है टेंशन में नशे भी कर रहे हैं और गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो इसको खत्म करने के लिए स्कूल, अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर टीचर से पूछे तो वो बोलते हैं कि अभी तुम अपनी स्टडीज ये खत्म करो, ट्वेल्थ करो, फिर तुम ग्रेजुएशन करो, फिर आगे तुम्हारा भविष्य फिर तुम देखना। लेकिन अगर अगर रेडियो स्टेशन पे अगर ये शुरुआत की जाए कि आपके भविष्य को अगर आपको क्या करना है, अगर वो एक उचित जो अगर आपका जो गोल है वो अगर बता पाए, तो ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो है फायदा होगा, फायदेमंद होगा ये। जैसे अगर कोई एक्सपर्ट हैं तो वो बताएं, अगर जैसे कॉलिंग का जो सिस्टम हो जाएगा कि अगर किसी युवा को कोई क्वेश्चन पूछना है कि सर मुझे इस फील्ड में हूं मैं और मुझे क्या करना है, तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा युवाओं के लिए कि वो कहीं दर दर नहीं भटकेगा, किसी यूट्यूब चैनल पे वो सर्च नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक कंटेंट के पीछे 100 वीडियोज मिल जाएंगे हमें। लेकिन यूट्यूब एक सीधा माध्यम हो जाएगा जिससे हम जो ये रेडियो सीधा माध्यम होगा कि हम किसी और जगह नहीं जा पाए।
0: हाँ मतलब या तो वीकली या मंथली या जैसे भी हो संभव एक प्रोग्राम से सीधे यूथ से कनेक्ट हो टेलीफोन के थ्रू, और उनके व्यूज जाने या उनकी जिज्ञासाएं जाने या किसी विशेषज्ञ के माध्यम से किसी करियर गाइडेंस का कोई प्रोग्राम इस तरह से रखा जाए ना, ताकि वो जो यूथ है अपनी कोई उनके मन में जो जिज्ञासा है वो पूछ सके, शंका उसका समाधान हो सके। कीर्ति तुम बताओ और किस प्रकार से रेडियो को हम उपयोगी बना सकते हैं, आकाशवाणी को उपयोगी बना सकते हैं यूथ के लिए, यूथ की बात कर रहे हैं।
3: सर जैसे एप्स के सब्सक्रिप्शन तो छूट सकते हैं, पर डीडी फ्री डिश और आकाशवाणी का कनेक्शन कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि ये फ्री है, फेयर है और 90 सालों से फियरलेस है। तो आकाशवाणी ने 90 साल तक देश को आवाज दी है, अब वक्त है देश के युवाओं को आवाज देने की, युवाओं की आवाज बनने की। जब 23 भाषाओं, 189 बोलियों और वेव्स ओटीटी की ताकत युवाओं के आइडिया से मिलेगी, तो यही आकाशवाणी जब विश्ववाणी बन जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं भविष्य की आवाज युवाओं के ही पास है, तो आकाशवाणी इसमें अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। सर
0: जी बहुत सही कहा, और कुछ इसके अलावा भी और कोई सुझाव हो तो अभी और फिर आएंगे आपके पास हम, तब तक हम रुक करते हैं, यहाँ यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं दिव्या सोनी, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके सुझाव हैं।
4: मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के जो युवा है वो क्या चाहते हैं, वो पहचान चाहते हैं, वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच चाहते हैं। मैं ये चाहूंगी कि आकाशवाणी जो है ऐसे युवाओं को जो जिन क्षेत्रों में रेडियो नहीं संभव है, आकाशवाणी जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है, आकाशवाणी का केंद्र जहाँ नहीं है, उन जगह आकाशवाणी पहुंचे और उन युवाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी प्रतिभाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच मिले। ना ही वो सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं कि हाँ उन्होंने आकाशवाणी को सुन लिया, लेकिन वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी युवा जो है उन तक ये प्लेटफॉर्म दिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, आपने कभी सोचा है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ की आकाशवाणी मतलब वो हम कहें कि वो एक्सक्लूसिवली वो ही एक माध्यम बसता है कि जहाँ वो पहुँच सकती है, जो उसकी पहुँच है, रीच है, और कुछ जो परिस्थितियां हैं उसमें इसका जो महत्व है वो, उस पर कभी आपने विचार शायद नहीं किया होगा आज के यूथ ने, लेकिन हमें करना चाहिए कि जब युद्धकालीन आपातकालीन परिस्थिति होती है, जैसे कि फ्रंट पर जब हमारे सैनिक होते हैं, तब आकाशवाणी का इतिहास भी रहा है कि हमारे जो भी सेनाओं ने अब तक युद्ध किए हैं, चाहे वो चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, तो उस समय आकाशवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे जवानों में जोश भरने के लिए, लोगों में उस समय जो पब्लिक है उसका मोरल भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, उनका उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि युद्ध से घबराहट फैलती है जनता में, तो जनता को सही सूचना देना, क्योंकि अफवाहों का दौर भी चल सकता है, तो उन अफवाहों पर विराम लगाना, सही सूचना जनता तक पहुंचाना, और साथ में फ्रंट पर जो सैनिक हमारे लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना, ये काम भी हमने किया है, और भगवान न करे आगे युद्ध हो, लेकिन फिर जब भी कुछ इस तरह की परिस्थिति हुई है आपातकालीन जैसी, तो आकाशवाणी ने मतलब हम कहें कि फेयर और फियरलेस
3: जी सर,
0: काम किया है अपना, और बहुत सी जैसे बाढ़ की स्थितियां होती हैं या और भी बहुत सी चीजें हैं, तो इसके अलावा आपने कुछ ऐसे हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे नक्सल प्रॉब्लम है, और जो एक उस समय कुख्यात जो हमारा एक तस्कर हमारा अपराधी था वीरप्पन, तो उससे संपर्क करने में भी रेडियो ने अपनी भूमिका, आकाशवाणी ने अपनी भूमिका निभाई है। अब आकाशवाणी रेडियो का पर्याय बन गया या रेडियो आकाशवाणी का पर्याय बन गया, जबकि रेडियो पर तो और भी चैनल हैं, लेकिन आकाशवाणी एक चैनल उसमें है। तो थोड़ा इस तरह की चीज़ों पर भी हमें यूथ को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और अब देखें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ना यूथ, तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यूथ, बहुत से जो जो कि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, वो आकाशवाणी की जो न्यूज़ है हिंदी और अंग्रेजी की न्यूज़ वो सुनते हैं और रेगुलर सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं। आपने जो भी जिन्होंने सक्सेस हासिल की है इन एग्ज़ाम्स में, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ हम डेली रेडियो सुनते थे। प्रोनाउंसिएशन के लिए आप आकाशवाणी को, टाइम पंक्चुअलिटी के लिए आप आकाशवाणी को याद कर सकते हैं, कंटेंट के लिए, विश्वसनीयता के लिए जैसे आपने बताया, क्रेडिटिबिलिटी जो इसकी है वो अभी और दूसरे चैनल्स की, प्राइवेट चैनल्स की नहीं। इसके अलावा जो न्यूज़ अभी हम देते हैं वो केवल आकाशवाणी ही दे सकती है, अभी भी प्राइवेट चैनल को, जो रेडियो चैनल है प्राइवेट रेडियो चैनल, उनको न्यूज़ की परमिशन नहीं है। तो आप न्यूज़ कहाँ से सुनेंगे, या तो आप टीवी पर देखेंगे, अगर सुनना है तो आपको फिर रेडियो आकाशवाणी। तो इस तरह से हमारा प्रयास पूरा है। इसके अलावा अब मैं आपको चाहूंगा कुछ भी आप अपने विचार जो भी हो इस पूरे प्रसंग को लेकर आज के, तो थोड़ा अपना जो है आप संक्षेप में आप बताएं।
1: भारत जैसे युवाओं का देश है, हमारी जो जनसंख्या सबसे ज्यादा युवाओं की है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक हमें मजबूत सेतु मिले जिसकी वजह से हम उससे कनेक्ट हो पाए, हम एक साथ जुड़ पाए, जिसके लिए जैसे रेडियो के अंदर अपन पॉडकास्ट कर सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, मोबाइल के अंदर अपना ऐप है जैसे अपन ने बना रखा है, उससे अपन और भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, इससे अपन अत्यधिक प्रभावी ढंग से अपन एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं।
0: आपने ऐप डाउनलोड किया है आकाशवाणी का?
1: बिल्कुल,
0: न्यूज ऑन AIR ऐप। ये कहाँ मिला आपको?
1: प्ले स्टोर ऐप से।
0: हाँ, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको ये मिलेगा। तो जिन्होंने भी नहीं किया, मैं इस मंच के माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से सारे सुनने वाले यूथ से कहना चाहूंगा कि न्यूज ऑन AIR ऐप जो है वो डाउनलोड करें, उससे वो आकाशवाणी नागौर भी सुन सकते हैं और आकाशवाणी के दूसरे केंद्रों को भी सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR जो है NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR, ये ऐप आप दूसरे श्रोताओं को भी कहें और वो उनसे भी कहें कि वो आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना स्टार्ट करें अगर अब तक नहीं सुन रहे हैं तो।
1: अब यही समय है साथ चलने और युवाओं की बदलती आवश्यकता को समझने का भी अवसर है, इसलिए हमें एक साथ जुड़ना चाहिए और अपनी आवाज को और भी बढ़ावा देना चाहिए।
0: क्रम को तोड़ते हुए अब हम पूछेंगे, अपने विचार बताएं खुलकर, जैसे हम ये एक तरह से जो चर्चा कर रहे हैं यूथ से ही कर रहे हैं, यूथ के लिए ही कर रहे हैं और यूथ के द्वारा ही कर रहे हैं।
4: मैं ये बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी क्या है। आकाशवाणी एक भारत की राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण सेवा है जो देश की आवाज के रूप में करोड़ों लोगों तक सूचना, शिक्षा व मनोरंजन को पहुंचाती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि यह केवल समाचार प्रसारित करती है? नहीं, ये केवल समाचार प्रसारित नहीं करती बल्कि समाज को जागरूक करती है, युवाओं को प्रेरित करती है, संस्कृति जो हमारी देश की संस्कृति है, विरासत है, उसको संरक्षित करने का और एक सशक्त मंच प्रदान करती है। आकाशवाणी की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि ये एक विश्वसनीय है और जनसेवा का कैन जो
0: कार्य कर रही है। बिल्कुल, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग हमारा हेवी है। तो प्रिया कुछ बोलना चाहती
2: हैं? जी सर, जैसा कि आपने बताया था कि युद्ध के दौरान और जब बाकी न्यूज़ जो चैनल्स थे वो नहीं पहुंच पाते थे, तो वहां पे जो है रेडियो ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था और आज भी देता आ रहा है। कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे जैसे युद्ध का समय है या फिर कोई बड़े मिशन होते हैं, वहां भी अगर सूचना का आदान प्रदान करना हो तो वो रेडियो के माध्यम से ही होता है आज भी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है।
0: बिल्कुल, एक दो चीजों को हम अभी भी छोड़ रहे हैं, जैसे कि जो क्रिकेट कमेंट्री होती है, दूसरे मैचेस की कमेंट्री होती है,
2: जी, जी, जी।
0: वो आप टीवी के सामने तो तभी देख सकते हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम से आप चलते फिरते उठते बैठते और भी आकाशवाणी का एक लाभ और
1: की जैसे अलग देखते अलग हैं ना
0: कि टीवी के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेयर आजकल टाइम किसी के पास है नहीं, तो हम आकाशवाणी का तो हमारा केंद्र नागौर है, चला सकते हैं, सुबह ब्रश करते हुए नहाते हुए सुन सकते हैं, ज्ञान भी मिल रहा है और जानकारी मिल रही है और मनोरंजन भी हो रहा है। और कुछ कीर्ति भी कुछ अपना?
3: अब सर जैसे आकाशवाणी का मुख्य आदर्श वाक्य क्या होता है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका मतलब होता है सभी के हित और सभी के सुख के लिए काम करना। तो आकाशवाणी ने सभी के लिए,
0: जी सभी के लिए, बहुजन के हित के लिए
3: काम,
0: बहुजन के सुख के लिए, मतलब सबके लिए, जनता के लिए,
3: उनके लिए,
0: और जो हमारे लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, जनता हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है और उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और हम नए नए कार्यक्रमों में फिर हमारे श्रोताओं से मिलेंगे। आज के इस कार्यक्रम को चूंकि समय की सीमा है तो हमें अब इसको समाप्ति की ओर ले जाना होगा, तो हम सबसे विदा लेते हैं और कहते हैं नमस्कार।
5: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष परिचर्चा आकाशवाणी और युवा आकांक्षाएं, जिसमें भाग लिया कीर्ति सिखवाल, प्रिया निम्बावत, कशिश जोशी और दिव्या सोनी ने, और संचालन किया अशोक कुमार गोयल ने। तो दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

माना दिन का ढलना तय है, रात का वक्त ठहरना तय है, पर मन में विश्वास जगाए तुम रहना टिके मशाले लेकर। रातों का ढल जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है। हार गए तो चिंता क्या है, इतना इनको गिनता क्या है। एक जीत पर इन सिक्कों का बस बजते रह जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। तो दोस्तों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, हमारे पर्यावरण का ख्याल रखिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्हवी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने अपनी सखी को याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी श्रोताओं का और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। सखियों, रिश्तों की खूबसूरती की बात करें तो फूल से अगर एक पत्ती झड़ जाए तो माली पूरा पौधा नहीं फेंकता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसमें फिर से खिलने की ताकत है। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एक छोटी सी गलती, गुस्सा या फिर गलत फहमी के कारण अपने लोगों को छोड़ देना समझदारी नहीं होती है। जहाँ अपनापन सच्चा हो वहाँ माफ़ करना और साथ निभाना ही रिश्तों की असली खूबसूरती होती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की बात के साथ, और आज की बात में हम शामिल कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। सखियों, वैसे तो सभी को पता ही है कि पर्यावरण क्या है, लेकिन कुछ ऐसी मोटे तौर पर जो जानकारी है वो हम ले लेते हैं। आप सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ पौधे हैं धरती का श्रृंगार, इनके बिना है जीवन बेकार। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। सखियों, पर्यावरण में पेड़ पौधे आते हैं, वायु आती है, और जो भी पर्यावरण में है सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, और जल, वायु, भूमि, वन, पशु पक्षी और प्राकृतिक संसाधन मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व जो है स्वस्थ पर्यावरण पर ही डिपेंड करता है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है प्रतिवर्ष आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सखियों, हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आजकल जो है अभी के समय में पर्यावरण के साथ हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है और उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है ये प्राकृतिक आपदाएं। बिना समय बारिश हो जाना, बिना समय आंधी या फिर मौसम का बदल जाना, क्लाइमेट का चेंज हो जाना, ये जो है पर्यावरण से ही रिलेटेड हैं। जो प्राकृतिक आपदाएँ आती है वो भी इसी से ही होती है। सखियों, प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं एक वार्ता और वार्ता है जलवायु परिवर्तन और प्रकृति पर इसके दुष्प्रभाव। इस वार्ता के वार्ताकार हैं श्रीमती कृष्णा विश्नोई। तो चलिए सुनते हैं ये वार्ता।
3: प्रकृति मानव जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जल, वायु, वन, पशु पक्षी और जैव विविधता मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, किंतु वर्तमान समय में मानव की अनियंत्रित गतिविधियों के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। औद्योगिकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण, अत्यधिक खनन, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग तथा बढ़ती जनसंख्या ने जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या को जन्म दिया है। जलवायु परिवर्तन केवल मौसम में बदलाव नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन चुका है। इसका प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों पर दिखाई दे रहा है, परंतु भारत के राजस्थान जैसे शुष्क और मरुस्थलीय राज्य पर इसका प्रभाव अत्यधिक गंभीर है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका एक बड़ा भाग थार मरुस्थल में स्थित है। यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म और शुष्क रहती है। कम वर्षा, तेज गर्म हवाएं, रेतीले तूफान और जल संकट यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, वर्षा अनियमित होती जा रही है तथा सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाएं बढ़ रही है। थार मरुस्थल में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कुमठा, फोग तथा थोर जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। यह पौधे अत्यंत कम वर्षा और तेज गर्मी में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। खेजड़ी वृक्ष विशेष रूप से राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ विभिन्न प्रकार की घास प्रजातियां भी पाई जाती है, जो ऊंट, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। थार मरुस्थल अनेक वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। यहाँ ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह कठोर गर्मी और जल की कमी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा चिंकारा, काला हिरण, रेगिस्तान लोमड़ी, जंगली बिल्ली तथा कई प्रकार के सरीसृप यहाँ पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पक्षियों में गोडावण विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो भारत के सबसे दुर्लभ पक्षियों में गिना जाता है। इसके अतिरिक्त बाज, गिद्ध, तीतर तथा अन्य प्रवासी पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं। किंतु वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन थार मरुस्थल की इस समृद्ध जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण राजस्थान में गर्मी की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। कई क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे वनस्पतियां और जीव जंतुओं का जीवन प्रभावित हो रहा है। वर्षा का चक्र भी अनिश्चित होता जा रहा है, कभी अत्यधिक सूखा पड़ता है तो कभी अचानक भारी वर्षा हो जाती है। इस असंतुलित मौसम के कारण पौधों की प्राकृतिक वृद्धि प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई स्थानीय वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में पहुंच रही है। घास के मैदान सूखने लगे हैं, जिससे पशुओं के लिए चारे की भारी कमी उत्पन्न हो रही है। जल स्रोतों के सूखने से वन्य जीवों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इससे उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है और कई प्रजातियां और प्राकृतिक आवास छोड़ने को मजबूर हो रही है। गोडावण जैसे दुर्लभ पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि उनके प्रजनन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार चिंकारा और काला हिरण जैसे जीवों को भोजन और जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी और मरुस्थलीकरण के बढ़ते प्रभाव से थार मरुस्थल का पारिस्थितिकी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। राजस्थान में जल संकट जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा और गंभीर दुष्प्रभाव बन चुका है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक शुष्क और मरुस्थलीय राज्य है, जहां वर्षा सामान्यतः बहुत कम होती है। राज्य का एक बड़ा भाग थार मरुस्थल में स्थित है, जिसके कारण यहां पहले से ही जल की भारी कमी रहती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण यह समस्या और अधिक विकराल होती जा रही है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा तथा भूजल के अत्यधिक दोहन ने राजस्थान को गंभीर जल संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है। राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत मानसून है, किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी बहुत कम वर्षा होती है तो कभी अचानक अत्यधिक वर्षा होने लगती है। इस अनिश्चित वर्षा के कारण जल का संतुलन बिगड़ रहा है। कई बार बारिश का समय बदल जाता है, जिससे खेतों को आवश्यक समय पर पानी नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप फसलें सूखने लगती है और कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आती है। भूजल स्तर का तेजी से नीचे जाना राजस्थान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में लोग पीने के लिए पानी के लिए भूजल पर निर्भर है। लगातार बढ़ती जनसंख्या, कृषि कार्यों में अत्यधिक पानी का उपयोग तथा वर्षा की कमी के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। लेकिन पर्याप्त वर्षा न होने के कारण भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप कुएं, ट्यूबवेल और हैंडपंप धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। कई स्थानों पर पानी इतनी गहराई में पहुंच चुका है कि उसे निकालना अत्यंत महंगा और कठिन हो गया। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हजारों लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है। बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर और नागौर जैसे जिलों में स्थिति अत्यंत गंभीर है। इन क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं। तालाब, बावड़ियां और जोहर जैसे पारंपरिक जल स्रोत भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खेतों में नमी की मात्रा भी लगातार कम हो रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण मिट्टी की नमी तेजी से वाष्पित हो जाती है, इससे फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाता है। राजस्थान के किसान मुख्य रूप से वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। जब समय पर बारिश नहीं होती तो बाजरा, मूंग, ग्वार, चना और सरसों जैसी फसलें खराब हो जाती है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सूखे की बढ़ती समस्या के कारण पशुपालन भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन जल और चारे की कमी के कारण पशुओं का पालन कठिन होता जा रहा है। कई बार किसानों और पशुपालकों को अपने पशु बेचने तक की नौबत आ जाती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। जल संकट का प्रभाव केवल कृषि और पशुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। दूषित और खारे पानी के उपयोग से अनेक बीमारियां फैल रही है। महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है। कई क्षेत्रों में पानी को लेकर सामाजिक विवाद और संघर्ष भी बढ़ने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है। राजस्थान में गर्मी की लहरें पहले की तुलना में अधिक तीव्र हो गई है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है। दूसरी ओर अचानक होने वाली भारी वर्षा और जल भराव के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी बढ़ रही है। राजस्थान प्राकृतिक खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहाँ संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, तांबा, जस्ता तथा अन्य अनेक खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती खनन गतिविधियों ने पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। विशेष रूप से अवैध और अनियंत्रित खनन के कारण राजस्थान का प्राकृतिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्वतमाला राजस्थान को थार मरुस्थल के अत्यधिक विस्तार से बचाने के साथ साथ वर्षा संतुलन बनाए रखने, भूजल संरक्षण करने तथा वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन अवैध खनन के कारण अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पहाड़ों को काटा जा रहा है और जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। खनन गतिविधियों के लिए भारी मशीनों और विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्वतों की संरचना कमजोर हो जाती है। लगातार पहाड़ों की कटाई से वन क्षेत्र कम हो रहे हैं और हजारों पेड़ नष्ट हो रहे हैं। पेड़ों की कमी के कारण मिट्टी अपनी पकड़ खो देती है और वर्षा या तेज हवाओं के समय मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। उपजाऊ मिट्टी के बह जाने से कृषि भूमि की गुणवत्ता कम हो रही है तथा खेती प्रभावित हो रही है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन अब इन पहाड़ियों और जंगलों का विनाश होता है तो थार मरुस्थल का विस्तार तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि राजस्थान के कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले जो क्षेत्र कृषि योग्य थे वे धीरे धीरे बंजर और रेतीले होते जा रहे हैं। यह स्थिति पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। खनन के कारण वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। खदानों से निकलने वाली धूल हवा में फैलकर वातावरण को प्रदूषित करती है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को सांस संबंधी बीमारियां

0: नष्ट होने के कारण वन्य जीवों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले तेंदुआ, लोमड़ी, चिंकारा, पक्षी तथा अन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। भोजन और पानी की कमी के कारण कई जीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने लगे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और खनन गतिविधियां मिलकर राजस्थान के पर्यावरण को और अधिक प्रभावित कर रही है। बढ़ते तापमान, कम वर्षा और वन विनाश के कारण सूखे की समस्या गंभीर होती जा रही है। मिट्टी की नमी कम हो रही है तथा भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट और कृषि संकट दोनों बढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार तथा न्यायालय द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी इस समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि अवैध खनन पर सख्त रोक लगाई जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तथा खनन क्षेत्रों का वैज्ञानिक पुनर्वास किया जाए। साथ ही लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक है। हालांकि इन समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लागू किया है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, वन संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार कर रही है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो रही है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी योजनाएं भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार जल संरक्षण हेतु तालाबों के पुनर्जीवन, वृक्षा जल संचयन तथा ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में सरकार ने ईंधन बचत का कार पूलिंग और पर्यावरण अनुकूल प्रशासनिक उपायों को भी बढ़ावा दिया है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। राजस्थान में कई गैर सरकारी संगठन भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उर्मूल ट्रस्ट थार मरुस्थल के पशुपालकों और ग्रामीण समुदायों के जल परिवर्तन से निपटने के लिए जागरूक कर रहा है। यह संस्था जल संरक्षण, पशुपालन सहायता तथा सामुदायिक सहयोग केंद्रों के माध्यम से लोगों को सहायता कर रही है। इसी प्रकार विश्नोई समुदाय सदियों से पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह समुदाय पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा को अपना धार्मिक कर्तव्य मानता है। खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण की रक्षा के लिए विश्नोई समाज का योगदान विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज के समय में उनका यह प्रकृति प्रेम जलवायु परिवर्तन से लड़ने की प्रेरणा देता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल सरकारों के प्रयासों से समाप्त नहीं होगी, इसके लिए प्रत्येक नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जल और बिजली की बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए तथा स्वच्छ ऊर्जा अपनानी चाहिए। यदि आज हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। अतः कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के सामने एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में इसके दुष्प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बढ़ता तापमान, जल संकट, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता का ह्रास प्रकृति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। लेकिन यदि सरकार, समाज, वैज्ञानिक संस्थाएं और आम नागरिक मिलकर कार्य करें तो इस संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रकृति हमारी धरोहर है और इसकी रक्षा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। यदि पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा।
1: सखियों, श्रीमती कृष्णा विश्नोई ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के इसके दुष्प्रभाव के बारे में, और साथ ही पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जागरूक भी किया है। अब हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे

0: ईमेल आईडी पर youtexperrs@gmail.com पर और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सखियों, आज ही के दिन जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जो है निर्माण दिवस है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर महिला थी और एक क्षत्रिय महिला होने के नाते उनके जो कर उनके कार्यों को देखकर हर एक युवा जो है उत्साहित होता है। साथ ही पीएम विकास योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और शिक्षा सहायता प्रदान करना तथा साथ ही पारंपरिक कला शिल्प की विरासत को संरक्षित करना। इसके उद्देश्यों की बात करें पीएम विकास योजना की, तो उद्देश्यों में हम जो है कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है, साथ ही पारंपरिक कला शिल्प और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना भी है। स्कूल छोड़ चुके युवाओं को शिक्षा एवं प्रमाणन की सुविधा देना भी है। महिलाओं को नेतृत्व और उद्यमिता के लिए सशक्त बनाना भी इसमें शामिल है। बाजार और ऋण सुविधाओं से छोड़कर आजीविका को बढ़ाना भी इसमें शामिल है। इस योजना की पात्रता की बात करें तो ये योजना मुख्य रूप से भारत के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के नागरिकों के लिए हैं। जो भी नागरिक पात्र हैं इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, हमने अभी प्यारा सा गीत सुना था। अब हम ब्यूटी टिप्स में शामिल कर रहे हैं। बेसन से बढ़ाए अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता। बेसन को जो है आप अपने किचन में हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़

इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप डिश बनाते हो तो उसमें बेसन लगभग यूज़ करते ही हो, तो बेसन को हम जो है अपनी सुंदरता बढ़ाने में भी शामिल कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए बेसन में दही मिलाकर चुटकी भर हल्दी मिला लें और फिर अपने फेस पे एक मास्क की तरह इसे यूज़ करें और 10 से 15 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दीजिए, और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से या फिर ठंडे पानी से भी आप धो सकते हो। हाँ, लेकिन उसको अपने चेहरे पर ऐसे रब करना है, आराम से रगड़ रगड़ के नहीं, उसे स्मूथली जो है रब करें, फिर उसे निकाल दें। आपकी त्वचा में जो है चार चांद लग जाएंगे, बिल्कुल आपकी त्वचा जो है मुलायम और एकदम स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। तो आप इस ब्यूटी टिप्स को अपने घर पर अपना सकती हैं। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

सखियों, शाम का समय जो है सुकून देने वाला होता है, जो दिन भर की थकान को चुपचाप समेट लेता है। ये पल खुद के साथ बिताने का होता है। सखियों, घड़ी की टिक टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

0: बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। आज सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: मिथुन और शिल्पा राव के गाए इस 10 फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्हवी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:20 में हैं। आए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर।
1: गोकुल गडरी गुजरी तो मुतरा नगर रो कान मारग बीच झगड़ो।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकड़ल्या झाई पड़ी तो पंती निहारिनिया रे जी बड़ल्या छला बया तुम्हारे।

नैना रामी नाना के गए इस लोक गीत के साथ ही माटी की सर कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

मुख्य समाचार। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये स्थान आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ

0: बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 3 दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है। निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज संपन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई। वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आई।

0: रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधा रोपण, वितरण अर जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन अर आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल सरूफी, कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। अर प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट माए कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक माए इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में कोई बदलाव नहीं करी चियो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आ जानकारी दीनी। वे कह्यो के बैंक चालू माली साल सारू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माए बढ़ोतरी री रेट पहली री 6.9% घटार 6.6% करण रो फैसलो किन्नो। आरबीआई अनिवासी भारतीया, भारतरा प्रवासी नागरिका और दूजा पात्र विदेशी निवेशका सारू इक्विटी बाजार माए निवेश रा मौकाई बधाया है। सरकारी दूजा देशां रा संस्थागत निवेशकां ने सरकारी शेयरां माथे भेवण वाला पूंजीगत फायदा माथे टैक्स माय छूट दीनी है। देश माय पॉलीमर आधारित नोट चलावण रा प्रस्ताव माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो के देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं बैंकां री शाखावां और एटीएम माय नोटां री कमी री शिकायतां मिली ही। श्री मल्होत्रा बतायो कि बैंक कने जरूरी तादाद माई नकदी मौजूद है और इनरी कमी तुरंत पूरी कर दी जावेला। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा तहत राज्यों 3 सीटा माथे वेवन वाला चुनाव बाबत कांग्रेस रा उम्मीदवार नीरज डांगी आज पर्चो दाखिल किन्नो। वह विधानसभा भवन माए चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा सामी नाम पानो भरियो। ये भगत राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा माए विपक्षरा नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा माए कांग्रेस रा मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगी री उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी उत्तर प्रदेश माए बलिया राज जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल रह देश री 100वीं रामसर ठौर वेवन रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश माए श्री मोदी कहो के ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहा ताल माए भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ही इन उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वह कहो के पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम कर।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जनताओं आबो हवा रे मुजब जीवन रो तरीको अपनावण और धरती ने बचावण री अरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर माए राखी जाए कार्यक्रम माए श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण माए योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत इस साल प्रदेश माए 10 करोड़ पौधा रोपणु तय करीचियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखर राज्य माए हरियाली बढ़ावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखीचिया। अलवर माए सशस्त्र सीमा बल री ओरु पौधा रोपीचिया और जनता ने पौधा बांटीचिया। हनुमानगढ़ डीग सिरोही नागौर डूंगरपुर जैसलमेर बाड़मेर चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई ठोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर माए पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू माए पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश माए चौमासारी बिरखा सरू वेवण रा हालात अनुकूल है। केरलम माए चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी सरूफी राज्य माए चौमासाओं पहले री हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह माए राज्य माए चौमासारी बिरखा सरू वेवण रा आसार है। इन बीच 7 जून ताई प्रदेश रा कई हलका माए आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला माए ऑरेंज और 8 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम माए आया बदलाव तेज गर्मियों थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओरु आज राजस्थान और पंजाब माए साइबर अपराधा माए शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी जिया। ईडी री टीमा जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए एक सागे करी जी कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए मोबाइल फोन माए लगन वाली सिम और साइबर अपराध माए काम आवण री शंका वाला इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1,000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इंसारू जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बता रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो के 6 दिन री ई यात्रा माए जात्रुआ सारू सगल

0: असुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कन लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावण रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो कि इन स्टेशन रे हाईटेक मेवणो सैर सपाटा वठेरा हाथरी कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बढ़ावो मिलन सागे नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माय भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओं सावचेत रहण री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो कर रेलवे माय सगली भर्तियां ते नियमा रा तहत साफ कोई सागर करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नहीं वह है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज री ठापण्या पाछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला माए ई बीमारियों मिलता जुलता लक्षण री ठापण्या पाछे माना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड माए भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ई महिला माए इबोला संक्रमण री पुष्टि नहीं हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक माए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो कि पकड़ी जिया लोगा माथे शिकायत करण वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माय आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माय संविदा रा आधार उ लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथा शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माय भागीदार लोगा ने लिस्ट माय नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथ 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। RBI रेपो रेट माय कोई बदलाव नहीं कीनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माय पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई। कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

वस्तु है जिसको अपन ने फायदो कराओ। इरे अलावा आर्थिक लाभ भी है कि भाई वृक्षारोपण में जिसको लकड़ी फल और इरे अलावा अन्य अपन के जड़ी बूटियां भी मिले भी हुए जिसको अपन के आर्थिक अवसर भी पैदा हो जावे। सामाजिक लाभ के मायने वो है कि भाई वृक्षारोपण हुए जिसको समुदाय में एक साथ लावे और अपने लोगों ने जिसको पर्यावरण जुड़न मदद भी करे। इसके अलावा जैव विविधता ने भी बढ़ावे, जल की गुणवत्ता में सुधार लावे, रोजगार में भी बढ़ावो हुए, तापमान ने नियंत्रण करने में भी मदद करे। वृक्षारोपण हुए जिसको तापमान में कमी हुए और खुशी बढ़ने में भी मदद मिले करे। पर्यटन ने बढ़ावा मिले, भूजल स्तर ने बढ़ाने में मदद मिले। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ है, भूस्खलन है, ब्याह के जोखिम ने भी कम कर देवे। सुंदरता भी आवे अपन के पृथ्वी की। इसके अलावा छाया भी मिले, प्रदूषण में कमी हुए और वर्षा लावण में भी मदद करे और अपन को भविष्य है बिन्ने भी है जिसको सुरक्षित कुण रहा की पर्यावरण पर्यावरण में भी सबू मददगार है पेड़। और इरे अलावा अपन है जिको पानी भी बचावनो है, यानी कि अबे बरसात आई तो धरती मायने है जिको के जो भी सूखा कुआ है ब्याने है जिको आपने पानी जिको बेर यूं ही जावे तो ब्याने जिको सूखा नलकूप है कुआ है ब्यांग मायने आपन डाल देना चाहिए, यानी कि पानी है जिको पाछू धरती के मायने जावे तो थोड़ो घणो जल स्तर भी ऊंचो आवे। वृक्ष आपा लगावा तो घणे यहाँ पर लगाउन को तरीको भी हुआ करे और मारा किसान भाइया ने तो जितो तरीको है बीतो कि नहीं है भी कोनी, यानी कि आपा पौधा है जिको नर्सरी में भी ला सका, बीज भी बाहर लगा सका। और आपा है जिको कई बार हुए कि भाई बीचे कटी आपा लगा दा एड़ी जगह लगा दा जटे भी जरूरत कोनी, बट कोई चीज बना रहा है तो बा आपा है जिको भी एक जगह आपा ने है जिको दूसरी जगह स्थानांतरित भी कर देनो चाहिए। वृक्षारोपण की विधि का ये सब पहली तो है जिको आपा है गड्ढो यानी कि खाडो है वो आपने पेड़ के आकार के अनुसार खोदनो चाहिए। पेड़ की जड़ के अनुसार आपने जिको दुगुनो खाडो खोदनो चाहिए। इरे अलावा है जिको भी ने ठोक छोक के आपने पोली कर देना चाहिए, यानी कि मिट्टी ने है जिकी ढीली कर देनी चाहिए। बिर पछे जिको खाद या कंपोस्ट और कार्बनिक पदार्थ भी डालना चाहिए। पेड़ ने है जिको सावधानी पूर्वक खाड़ा के मायने लगाना चाहिए और गाड़ा के मायने है जिको मिट्टी के पौधा के आसपास है जिको के छोकी जमा देनी चाहिए और दबावनो चाहिए जिका पेड़ मायने जिको अच्छी तरह है जिको वो जम जावे। इरे अलावा भी मैं पानी देना चाहिए। कई लोग हुए जिका खाली भाई देवे और पाछो हार हंबाल कौन करे, कहवे ना कि भाई टावर पालो और चाहे पेड़ पालो बराबर हुए तो टावर ने आप क्या ध्यान रखा बयान आप पेड़ की नींगे रखा तो आपा कहे जिको पेड़ है जिको कहे जिको समझ लो पेड़ 2-3 साल को जावे ना बीर पच बीर है जिको आवश्यकता थोड़ी एक बढ़ जावे पर आपा की देखभाल की आवश्यकता थोड़ी एक कम हो जावे। सावधानी वो रखना चाहिए कि पेड़ आप जट लगावा बे घर इमारत या रास्ता थोड़ो दूर लगाना चाहिए जिसू है बयाने नुकसान कोनी हुए। इर अलावा जलवायु और मिट्टी के अनुसार ही है जिको अपन ने पेड़ लगावनो चाहिए और धीरे धीरे है जिको अपन ने पानी है जिको देवनो चाहिए और नियमित रूप है जिको भी पेड़ पौधा के जिको कटाई छटाई और खाद जरूर देवनो चाहिए। इर अलावा है जट्टे आप पेड़ लगावा बट पर्याप्त जगह होनी चाहिए क्योंकि बीरे जिकी बढ़वार है भाई मैं अगर कमी हो तो वो पचे अपने छोको फल फूल या छाया कोनी दे तो इर वास्ते अपने जिको वृक्षारोपण करा ने ध्यान रखनो चाहिए। इरे अलावा है जिको के अबार लोग है जिका अंधाधुंध देखे जटी कोई चीज ले उन्हें जावे के थैलियां मायने ले रह जावे। अब प्लास्टिक है जिकी सब ज्यादा है जिको अबार पर्यावरण ने प्रदूषित करे तो अपन है जिको सब पहली तो प्लास्टिक ने है जिको कम कम काम में ले उनो चाहिए और जो भी आपा के घरे थैलियां हैं ब्याने है जिको एक जगह भेड़ी करनी चाहिए। लोग का ही करे कि समझ लो सब्जी काटी या फल काटे तो बे कचरो है जिको थैली के मायने गाल और हेजू बार फेंक देवे पच आपा का जिका गाय है या कोई छोटा मोटा दूजा ढाव डांडा है बे हेजू भी थैली हमें थे जिको खा जावे और धीरे धीरे धीरे धीरे बा प्लास्टिक आई है कि आ गड़े कदई कोनी तो बा धीरे धीरे भी पशु के पेट के मायने जिको जमा हो जावे और पछे जिको भी पशु ने जिको चारो और पानी सब धीरे धीरे धीरे धीरे बंद हो जावे और बिना मौत के मुंह तक भी ने ले जावे। तो इर वास्ते आपा ने है जिको प्लास्टिक ने है जिको कम कम काम में ले उनो चाहिए। इर अलावा है जिको के भाई आपा किसान भाई हाँ और आपा जित देखो के आपा खेत के चारों मेरे जिको पेड़ पौधा लगावा भाड़ भी हुए और आपा के जिको छाया भी हुए बड़ी तो भी हो जावे। कुल मिलार है जिको के भाई मारा किसान भाई जिता

0: पेड़ पौधा का हित सी है, बिता दूसरा कोनी। और हमारा भाई है जिको के भाई अपने प्रदूषण ने रोकण वास्ते जिको घणो ही ताबतोड़ काम भी करे, पण काई करे के लोग है जिको थोड़ी अपने फायदो है जिको दूसरा ज़्यादा ले ले। इस वास्ते अपने एक ही काम करनो है कि ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगानो चाहिए और ब्या को कम उकम 2 साल तक तो ध्यान रखनो ही चाहिए। अब हमारे किसान भाई उड़ीक रखे कि भाई राकेश भाई आया है, कई लाया है। तो भैया आज मैं राठौड़ी कुआ के बंसीलाल जी जिकी बंतल करी बात आए तो करूँ पूगती, लो सुनो
1: भैया। आज देखो टूटता टूटता चल लिया। हाँ अपने राठौड़ी कुआ के आगे चला तो देखो चारू में पट्टियां करी है और एक भाई है जिको खेत के मायने खड़ा है ब्यांको करा तावड़ी। राम राम सा।
2: राम राम सा। राम राम सा।
1: काय नाम है सा?
2: नाम बंसीलाल है सा।
1: बंसीलाल जी, तो बंसीलाल जी आपांगे है जिको कितना बीघा खेत है?
2: खेत तो 15 बीघा है आपांगे ने।
1: 15 बीघा है तो ओ भाईओड़ो काई है?
2: ओ रचको भाईओड़ो।
1: रिजगो भाईओड़ो है तो रिजगो कितना बीघा में भाईओड़ो है?
2: रिजगो 6 बीघा में भाईओड़ो है।
1: 6 बीघा के मायने है और लाडलो और 9 बीघा में हबे तैयार काटोड़ी है तो इम काई भाव बचे? बाजरी भाव। तो रिजगो भाई ने कितो टाइम हो गयो?
2: रिजगो की सर्दी में लगायो 4-5 महीना होगा।
1: 4-5 महीना हो गया। अपने बीज कटू लाया नागोरु के अपन घर कोई बीज
2: नहीं? नागोरु बीज घर को बीज हुए कौन रच का को?
1: बीज हुए को नहीं रहे ने?
2: हुए लेकिन प्रोसेसिंग लंबी रहे जी को हुआ कौन है बीज बाजार में लड़ो पड़ा।
1: तो आप बताइयो कि सर्दिया में भाई 5-6 महीना हो गया तो इन्हें कितनी बार काट लियो?
2: हर 7 दिनों काट ला।
1: हर 7 दिनों पचे किर हिसाब काटो के भाई 7-7 दिनों कितनी क्यारियां मायनु काटो और वो थोड़ो बताओ।
2: हाँ रोज की 10 कैरी है, 10 कैरी के हिसाब काट ला।
1: कितनी है टोटल क्यारे भाई? 70 होगी। 70-80 होगी जाने वा अपने फिरती आ जाओ।
2: हाँ, बस सुनते फिर 7 दिन हो वापिस नंबर आ जाओ भी क्यारी को।
1: आपांगे ओ पहली बार ही भाई हो के पहली भी यहाँ पर रिजगो और वगैरह भाव?
2: नहीं नहीं पहली भी भाव था रिजगो।
1: क्यों पहली रिजगो पहली काई भाई उड़ो वाटे?
2: रिजगो पहली तो आप में तो रिजगो ही भाव गेहूँ बोदा कड़े गेहूँ बोदा।
1: हाँ तो बार सियाड़ा माइने पहली रिजगो पहली गेहूँ भाई उड़ा की?
2: नहीं सर्दियों में गेहूँ कौन बड़ा सर, सर्दी के टाइम रिजगो भी आकर साथ ही।
1: अच्छा, सर्दी के टाइम में पचे ई माइने आपने फुमारे करो?
2: नहीं आपने क्यारण सिस्टम
1: क्यारा? अच्छा खौडा ही करी उड़ा है?
2: हाँ खौडा ही बना उड़ा।
1: खौडा बत्तो हुए के आपने फुमारे बत्तो हुए रिजगो?
2: खौडा बत्तो हुए।
1: खौडा बत्तो हुए पचे आपने कितनी देर खौडा के मायने पानी चाल?
2: खौडा रे मायने एक पानी 5-6 मिनट 7 मिनट भरी जाए खौडो।
1: हाँ जने आपने बटे रेवणो पड़े बंदा घेरना पड़े अनु बंद करो
2: रेवणो पड़े लेकिन कहीं के अब कहीं बड़ा बड़ा खौडा बनाए ना 10-10-15-15 मिनट पाछो नंबर आवे।
1: तो आपांगे पचे पानी केड़ो है ट्यूबवेल में?
2: पानी फसल के लिए तो ठीक ही है और पीवण के लिए ठीक होने।
1: पचे पानी की वगैरह जांच कराई है?
2: नहीं जांच कौन?
1: अपने रिजगो छोको माने पानी?
2: रिजगो ठीक माने, गेहूँ ठीक माने।
1: गेहूँ रिजगो दो ही और किसी फसल छोके हुए?
2: और तो पुराने टाइम में तो पान मेथी भी होती है लेकिन पान मेथी अब बटे ये एरिया में होगा कौन? अब मानने को नहीं पान मेथी तो
1: जन रिजगो और ओ अपने दो ही गेहूँ गेहूँ छोका माने?
2: गेहूँ ठीक माने। लाली बार 5 बीघा माने 40 क्विंटल गेहूँ हुआ
1: छोके ही
2: 40 क्विंटल गेहूँ हुआ।
1: अब आर जान आप बतायो कि भाई रिजगो भाई उड़ो है आपा लूणा 10 खौडा रोजी ना पचे काई देन गया रखोड़ी है कि आपा घर का ही सदस्य काट ला?
2: नहीं घर का ही काट ला।
1: पचे काई साहब
2: के तो कड़े से ज्यादा होगा नहीं जान बुला वहाँ जान कोई 11 साझा है या कोई अम्मो से
1: 11 पूनम हो पचे आपा खुद ही कहा के आपा कनु खरीद ले जावे?
2: नहीं आपा कनु तो खरीद ले जावे बे आग ला खुद
1: बेने के तो पचे तोल के हिसाब देवो के पुली के हिसाब?
2: आप तोल दे दम बस कुंटल तोल है।
1: अच्छा क्या बावड़ा ठीक है?
2: हाँ 600 रुपया कुंटल है।
1: तो आप आगे पड़ता पड़ता
2: बाबे की चिंता में।
1: अच्छा आप खुल्ले हुई तो तोल दा पचे भाई आपके पुड़िया बना हुए जो बना बोग
2: आप तो तोल ना।
1: बंसी जी एक बात पूछू के भाई आप है जी को और रिजगो है ना इन भाव है जने काई हावचेती राखनी इन मायने खाद बीज के बारे में थोड़ा बताओ?
2: बीज का मायने गोबर की खाद सब ज्यादा डालनी पड़े सब ज्यादा
1: गोबर के ना? हाँ
2: पूरा खेत ने गोबर एकदम फाटनो पड़े पच रिजको बाण पड़े। कंपनी है जी को रहा कह रही है कि रिजको चले 3 साल तक मांगो लेकिन 3 साल चले कोनी मांगे, 1.5-2 साल इलाज चले, क्योंकि पछे चौमासा के मौसम मायने रिचका के मायने घास वगैरह ज्यादा उग जावे,
1: कारण
2: वो रिचको लंबा टाइम तक चाल नहीं पावे।
1: अच्छा,
2: तक तो चाल जावे,
1: 2 साल तक चाल जावे।
2: चल जावे।
1: हाँ, ये बीज भी महंगो घणो आवे।

तो मांग भाया ने ओ जरूर मोइनुद्दीन मन छाला को ओ भजन दायायो के लिले सुआ हरीरो नाम। हबे देखो के आज है नागौर मंडी बाजार भावरा, तो नागौर मंडी में मूंगरा भाव आज 5,000 लेर 8,000 तई, काला तिलरा भाव 8,000 लेर 9,500 तई, सफेद तिलरा भाव 9,000 लेर 10,500 तई, जवार रा भाव 3,000 लेर 5,700 तई, गवार रा भाव 5,000 लेर 5,611 तई, तारामीरा रा भाव 4,900 लेर 5,850 तई, जीरा रा भाव 14,000 लेर 20,400 तई, दाना मेथी रा भाव 5,000 लेर 6,100 तई, इस सब गोल रा भाव 9,000 लेर 13,400 तई, सौंफ रा भाव 6,500 लेर 11,300 तई, चना रा भाव 4,700 लेर 5,350 तई, असाड़िया रा भाव 5,000 लेर 6,100 तई, हिंदी हुआ रा भाव 6,000 लेर 7,000 तई। अब घड़ी कने जोवा जाने घड़ी कहे राकेश भाई खेती बाड़ी रो तेवड़ो अट्टे टाइम हुए पूरो, तो आप राकेश भाई ने दिलाओ सीख करा। राम राम।

खेती बाड़ी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 में आए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है।

0: की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
2: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
2: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
2: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
2: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
3: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
4: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी नकली हो सकता है।
3: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
4: कैसे
3: हो
4: सकता है? नकली ही ना तो सकता,
3: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
4: सभी
3: ने बोला कि नकली है।
5: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
2: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
2: जी, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
2: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
5: महाराज की
0: जय,
5: महाराज की
0: जय,
5: महाराज की
0: जय।
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी,

0: कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है।

उंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आज हमें यह संकल्प लेना है कि हमें इस धरती को हरा भरा करना है।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं। आए सुनते हैं फिल्म संगीत कव्वालियां।

कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं फिल्म बरसात की रात का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी मनाडे और एसडी बतीश, हसा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में।

अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है।

चिलमी चैनल के संग आप सुन रहे हैं फिल्मी कवालियाँ। आइए सुनते हैं फिल्म द बर्निंग ट्रेन का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: फिल्म का नाम धर्मा, आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: समझने वालों।

इस गीत के साथ ही फिल्मी कवाली कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, रात्रि की 8:30 में हैं। आए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए जमाने के।

0: Pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa, pushpa,
1: फिल्म का नाम पुष्पा टू द रूल, आवाज मिका सिंह और नकास अजीज की।
0: तू दाढ़े पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म द ड्रीम जॉब का आवाज़ मनोज तिवाड़ी की थी। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमीचल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया।

0: कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी

0: में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, रात्रि के 9 बजे हैं और सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज

हरिहरन के गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:25 में आए सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम।

0: these things were quite common. So they felt that probably the environment is very conducive to set up their own enterprise. And they have also been deriving satisfaction out of the fact that instead of seeking employment, now they are giving employment. So this has really pulled the Gen Z, the new generation, into the fold of this MSME ecosystem. And I feel the government's proactive policies have been a big enabler in this direction.
1: So agar hum entrepreneurship ki baat kare and we talk about MSMEs in that regard, Bharat Khera ji, how do you see the role of human resources and finance, especially trade finance?
0: Aap dekhein, kisi bhi enterprise ke liye, सबसे क्रिटिकल जो पेन पॉइंट रहा है वो रहा है एक्सेस टू फाइनेंस, बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू स्केल अप और इन्वेस्ट बिकॉज दे डिडंट हैव इजी एक्सेस टू क्रेडिट एज वेल एज टू इक्विटी. सो प्रोबेबली दैट हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू सम गुड पॉजिटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस. एक क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी थी फॉर पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 14 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है ताकि एंटरप्राइजेस आगे बढ़ करके आ सकें. और पिछले 3 सालों के अंदर इसमें 10 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी, 14 लाख में से 10 लाख करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी है पिछले 3 ही सालों में दी गई है. इससे भी एक सपोर्ट मिली इनको एक्सेस करने के लिए. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इक्विटी में भी इन्फ्यूजन करने के लिए सपोर्ट प्रदान करी है. पहले भी एक फंड सेटअप किया था गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश करने का ऐसे एंटरप्राइजेस में जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इस बजट में भी एक एसएमई ग्रोथ फंड और एक टॉप अप फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ और प्रयास किए हैं. तो एक्सेस आज के समय में आसान हो गया एंटरप्राइजेस के लिए. जो सबसे बड़ी चुनौती गिनी जाती थी वो उसका एक समाधान निकला है इन इंटरवेंशन के माध्यम से.
1: अगर हम समाधान की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेशन आईपीओ के थ्रू भी हो पा रहा है, और यू हैव द निफ्टी वेयर यू हैव एंटरप्रेन्योर्स, दोज स्टार्टअप वेंचर्स आर एबल टू एक्सेस इक्विटी फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ. अलॉन्ग विद दैट, बैंकिंग का क्या रोल रहा है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टार्टअप एंटरप्राइजेस?
0: देखिए, बैंक्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है पर्टिकुलरली फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्रेडिट. बैंक्स आर जनरली इंसिस्टेंट ऑन कोलैटरल्स व्हेनेवर समबडी सीक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक. सो बैंक्स नॉर्मली आर कॉशियस दैट इट शुड नॉट बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट टुमारो, द मनी शुड नॉट बी वेस्टेड अवे. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू मेक श्योर दैट दे आर लोनिंग इट टू द राइट पार्टी एंड फॉर अ राइट प्रोजेक्ट. So they usually insist on taking a collateral also. Now, these micro and small enterprises in particular normally do not have collaterals to provide to the banks. So that is where when the government steps in to provide credit guarantee, it wins the confidence of the banker also. Plus, it is a huge support to that enterprise when he has a viable project in hand and is not able to provide the collateral, it's a support to him. Plus, I think even for those institutions who are operating the ecosystem, for them, it generates confidence because the government is backing it. So this has made a significant and transformational impact, I would say.
1: A business requires human resources. You need skilled labor. You also require top management, middle-level management who know what they are doing with skilled labor itself. How do you see Skill India playing a very important role across sectors where the opportunity has now come for labor-intensive industries with businesses weaning away from China and now to South Asia?
0: You know, as we have moved from having labor-intensive industries like textiles, auto, electronics, towards those sectors which are the new technology sectors, like electric vehicles, for example, robotics, we have use of automation in almost all sectors, advanced healthcare. So in these sectors, there is a different kind of skill set that is required from the young generation. And that is where Skill India has been a very important critical enabler. And besides Skill India, there are skill development schemes and programs which are being operated by various other ministries of the government. And government has made a conscious effort to ensure convergence among all these schemes. So in fact, even Ministry of MSME has a very important role to play in developing skills, particularly industry-grade training. And we have technology centers located pan-India, which are running these courses for from 6 weeks to 6 months, sometimes even for a year. And they provide industry-grade training to the young generation. It offers them good opportunities of placement also thereafter.
1: ने भी देखा है कि काफी परिवर्तन आया है इन द लॉ व्हेन इट डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज. इफ यू लुक एट वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द न्यू इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड ऑन वेजेस फॉर इंस्टेंस,